0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: वो आपकी खिदमत में शायर लखनवी की गजल जो फरमाइश के तौर पर दी गई है, जो थके थके से तो हौसले।

0: that it's love for money.
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: साज दिल जब सदा नहीं देता, कोई नगमा मजा नहीं देता।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: In the way to start, this is a matter in the house. Come on.

0: फैंटास्टिक परफॉर्मेंस. हमारे दोस्त शंकर एहसान लॉय जिन्होंने ये कंपोज किया है, ये आपकी आवाज सुनते तो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं. प्लीज इनके लिए वोट दीजिए बहुत सारे. थैंक यू.
1: मेरे लिए वोट करने के लिए टाइप कीजिए AMANAT अमानत और इसे भेज दीजिए 7575 पर. आप मुझे फोन भी कर सकते हैं 1904247575 13 पर. 13 मेरा कोड है. रिलायंस सब्सक्राइबर्स भी मुझे वोट कर सकते हैं 5123493 पर. थैंक यू.
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है.

0: फैंटास्टिक परफॉर्मेंस. हमारे दोस्त शंकर एहसान लॉय जिन्होंने ये कंपोज किया है, ये आपकी आवाज सुनते तो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं. प्लीज इनके लिए वोट दीजिए बहुत सारे. थैंक यू.
1: मेरे लिए वोट करने के लिए टाइप कीजिए AMANAT अमानत और इसे भेज दीजिए 7575 पर. आप मुझे फोन भी कर सकते हैं 1904247575 13 पर. 13 मेरा कोड है. रिलायंस सब्सक्राइबर्स भी मुझे वोट कर सकते हैं 5123493 पर. थैंक यू.
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है.

0: रास्ते भी अजनबी हैं, चेहरे भी अजनबी हैं, बेचारगी है हर तरफ, बेगानगी है। कल भी एक आरजू थी और आज भी एक आरजू है, काश कोई हम सफर मिल जाए।
1: कोई हम सफर नहीं है, कोई जाने जाने।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

तेरी हर चाप से, यानी हवा के झोंके से कुछ पत्ता हिला या पर्दा हिल गया है, आठ आठ को चाप कहते हैं, कि तेरी हर चाप से जलते हैं ख्यालों में चिरागीनी खुशी, शायद महबूब आ गया।

मुसलमान के लिए। इस अगर किसी के आबाओ माँ बाप हैं तो अब यह है कि माँ बाप अगर वो एक ऐसी तरफ बुला रहे हैं जो अल्लाह अल्लाह के रसूल के मुकाबले में है, मुखालिफ है, दीन इस्लाम के खिलाफ किसी को दावत दे रहे हैं, तो अब यह है कि आप आपको यहाँ इम्तिहान है। अगर सच्चा ईमान है तो आप माँ बाप की मोहब्बत को कुर्बान कर देंगे, उनकी नाराजगी सरमूल ले लेंगे। वो सारे ऐसे लोग हैं, अच्छे नौजवान लड़के हैं कि वो मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं तो वो सिर्फ बाप को खुश करने के लिए हराम की माल कमा रहे हैं, हराम का माल कमा रहे हैं, खोसके चला रहे हैं, स्पीले हाल चला रहे हैं कि बाप मेरा ऐसे करते। तो अब इस्लाम का तकाजा ये है, आपका अगर ईमान सच्चा है तो कहा उस बाप की मोहब्बत को जो है वो पाँव पाँव के नीचे रोंद दो और अल्लाह अल्लाह की रसूल की मोहब्बत सबसे आला हो। तो अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के लिए सबको कुर्बान कर दो। बीवी है, बीवी आपसे गलत डिमांड करती है तो फिर आपके लिए उस वक्त ईमान का इम्तिहान हो जाता है कि आप आपकी मोहब्बत किस पर गालिब आ जाएगी। अगर बीवी की नाजायज मोहब्बत मान ली आपने तो गोया कि अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत जो है वो आपकी किसी काम की नहीं है। इस तरह से कौम कबीले का बड़ा मसला होता है, जब भी जो है कोई शादी ब्याह के मौके होते हैं और कोई ऐसी मुनासिबत आती है तो आदमी को उसे कौम कबीले के रस्म रवाज याद आ जाते हैं और फिर ही देखता है कि मेरा अल्लाह किस में खुश है, अल्लाह का रसूल किस में खुश है। तो वो ये पता भी चल जाए, कोई बता भी दे, कहते हैं जी क्या करें मेरी कौम कबीले ऐसे मेरा कौम को। तो यहाँ इस आयात में गोया के मुसलमान के लिए एक तराजू दे दिया गया है, यहाँ इस तराजू के मुताबिक अपनी मोहब्बत को नापो और अगर आपकी अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत सबसे आला हो जाए और बाकी सब माबूद तराजू झुक जाए अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रजा के लिए, आप कौम कबीले के सारी डिमांड को आप दुत्कार दो, पाँव के लिए रोन दो, फिर कहेगा हाँ आपको अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है। इस तरह माल है, माल को कमाने के लिए अगर जो आप बढ़ा रहे हो बढ़ा रहे हो उसके लिए लगे हुए हो तो आप देखना यह है कि ये माल कहाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत का तकाजा क्या है। अल्लाह अल्लाह के रसूल का मोहब्बत के तकाजा यह है कि हलाल का माल कमाओ, हलाल का कमाल कमा लिया अच्छी विधियों से किया, फिर सही जगह पर खर्च करो, इस माल के जरिए से नजायज आयाशिया ना करो, नजायज आयाशिया ना करो, इस माल के जरिए से बुराइयां ना फैलाओ, इस माल के जरिए से अल्लाह अल्लाह के रसूल के बागियों को जो है उनकी मदद ना करो। तो यह इम्तिहान है हर मुसलमान का। और फरमाया इस तरह से बिजनेस है तो ये बिजनेस भी जो है, अब आप एक बिजनेस के लिए बिजनेस तो हलाल अगर बिजनेस करते हो तो ठीक है, लेकिन अगर अल्लाह अल्लाह के रसूल के हुक्म के खिलाफ आप नाजायज बिजनेस कर रहे हो तो आप अपने ईमान के दावे में नाकाम वो झूठे हो। और इसी तरह से बिजनेस सही है लेकिन सारा टाइम बिजनेस के लिए ना आपको नमाज का टाइम मिलता है, ना कभी अल्लाह का जिक्र करने का टाइम मिलता है, ना रसूलुल्लाह पर सलातो सलाम भेजने का टाइम मिलता है, ना आपको जो है कभी कुरान की तिलावत करने का टाइम मिलता है। तो इसका माना है कि आप तो बिजनेस ही सब कुछ है, फिर अल्लाह और अल्लाह के रुखसत से मोहब्बत का दावा करते हो, वो दावा आपका नाकस है, वो नहीं है। इस तरह से मकान है, मकान बनाना जो है पसंदीदा मकान अच्छी बात है, लेकिन अल्लाह अल्लाह के रसूल के मोहब्बत पर ना हो। अल्लाह अल्लाह के रसूल के मोहब्बत को तुमने कुर्बान कर दिया, बैंक से सूद ले लिया, बड़ा मकान बना लिया, फिर उसके अंदर क्या क्या खुराफात रख लिए। तो अब अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर ये हो गया, अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत हो गई मगलूब, बाकी सारी मोहब्बतें हो गई गालिब, अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है लेकिन दूसरों की मोहब्बत के लिए अल्लाह अल्लाह के रसूल की बात नहीं मानी जाती है, तो फरमाया फिर ये हो जाएगा फतह रब्बस हु, तो फिर इंतजार करो हत्ता याती अल्लाह बे अम्रिही, यहां तक कि अल्लाह का हुक्म आ जाए। अल्लाह का हुक्म ना फरमाने पर अल्लाह का अजाब आता है, तो ये मुसलमानों ये हो जाता है ये। फरमाया जिन दिलों के अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत नहीं होती और वो नाफरमानियां करते रहते हैं वो फिस्क व फाजिर फजूर में शामिल हो जाते हैं, और फिस्क फजूर की वजह से फिर आदमी की सही रहनुमाई नहीं होती है कि तुमने असल किसको खुश करना है, कौम कबीले को खुश करना है, बीवी को खुश करना है, औलाद को खुश करना है, या तुमने अल्लाह अल्लाह के रसूल को खुश करना है। तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें कौन काम आएगा मुश्किल।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामने नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर अपनी टीम के साथ बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर है। सामने हमने इंट्रो में भी कहा था कि आज हमारे बहुत सारे मेहमान होंगे। आज हमारी मौजूद शख्सियत जिन्हें आप अक्सर सुनते रहते हैं, मुस्लिम लीग नवाज के चीफ पैटर्न हैं, चीफ आर्गेनाइजर हैं मुस्लिम लीग नवाज के डेनमार्क में, मिर्ज़ा रहमतुल्ला बेग साहब इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। बेग साहब, एक बार फिर आपको अदारा आपकी आवाज पर खुश आमदीद कहते हैं।
2: जी राज साहब, बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत नवाजिश अनायत।
1: बेग साहब, मौसम तो अच्छा है और उसके अलावा धूप भी निकलती है, गर्मी भी है, तो इसका ख्याल रखिएगा। अब आम भी बहुत ज्यादा मार्केट में आ चुके हैं और 14 अगस्त के भी फंक्शन हो रहे हैं।
2: जी बिल्कुल, के बहुत सी जगह पे 14 अगस्त के फंक्शन हो रहे हैं और हमारा भी जो प्रोग्राम है वो शाम 6 बजे 14 तारीख को, क्योंकि जितने साथी सब ने मिलकर फैसला किया कि हम 14 अगस्त को ही प्रोग्राम करेंगे।
1: आपका 16 अगस्त को नहीं था?
2: नहीं सर, वो हमने चेंज करके 14 अगस्त पे आ गया जी। हमेशा हमारा प्रोग्राम 14 वाला दिन ही होता है, रिकॉर्ड मौजूद है आपके पास, तो इसलिए सब दोस्तों ने मिलकर फैसला किया कि हम 14 को ही करेंगे।
1: बेग साहब, चले इलेक्शन हो रहे हैं कश्मीर में, आपकी जमात जो है वो इलेक्शन जो है पहला मरहला वो जीत चुके हैं, तो दूसरा मरहला भी शुरू हो गया है, फिर अब तीसरा मरहला भी होगा। ये जो शोर पड़ा हुआ है कश्मीर में, आप क्या कहेंगे?
2: सर देखें, दुश्मन जो है ना, दुश्मन ही होता, उससे आपको किसी किस्म की कोई तवक्को रखने की जर नहीं होती। इसलिए नहीं होती कि दुश्मन ने अपना कभी ना कभी किसी ना किसी जगह पंगा जो है ना वो ले लेना। बॉर्डर पे इंडिया बैठा हुआ है, वो उसके इतने प्यादे हैं वहां पे कि आदमी जो है ना मजबूर हो जाता है उनको कुछ कहने के लिए। और जब पाकिस्तान और आजाद कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का एक वो हिस्सा है जिसके बगैर पाकिस्तान जो है ना वो मुकम्मल ही नहीं है, और हमने आजाद कश्मीर को इतनी सर्विस दी है पाकिस्तानी अवाम ने कि आप सोच भी नहीं सकते। लिहाजा ऐसे जो छोटे छोटे हादसे होते हैं वो तो हर जगह होते हैं, पाकिस्तान में भी हो जाते हैं कभी कभी।
1: लेकिन साहब, बड़ा ऐलान किया आपकी जमात ने कश्मीर में, हमारी हुकूमत बनेगी तो हम कश्मीर को ये चीजें देंगे, तो बेग साहब आप क्या कहेंगे?
2: 100% अगर नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहब ने ये ऐलान किया तो वो देंगी। देखे उन्होंने कहा कि हम आपको बसें देंगे, उन्होंने 10 बसें उसी वक्त ही भेज दी। जो चीज भी उनका वो ऐलान करेंगे तो वो इंशाल्लाह ताला प्रोवाइड करेंगे, डेफिनेट।
1: बेग साहब, मोहसिन नकवी साहब ने बयान दिया, हालांकि मोहसिन नकवी साहब आपकी हुकूमत का, मुस्लिम लीग की हुकूमत का हिस्सा है, वजीर दाखिला है, तो बड़ा मुतनाज़ा सा बयान है। राणा सनावला साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दूसरे लोग भी इस पर बात कर रहे हैं, आप खुद सोल्जर हैं तो आप क्या कहेंगे?
2: देखे बात सुने, नकवी साहब जो है ना उसको 4-5 पोस्टें दी हुई है, और किसने दी हुई है, कैसे दी हुई है, क्यों दी हुई है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आपको हर चीज की खबर होती है और आप खबर रखते हैं, और आप इसलिए ये कुछ भी कहना कबल वक्त है, सारे इकट्ठे बैठ जाएंगे, जो मुश्किल हालात में जा रहे हैं काम वो ठीक हो जाएंगे। दुश्मन तो ये चाहते हैं कि नवाज की जो हमारी हुकूमत है पाकिस्तान में वो भी खत्म हो जाए, तो ऐसे नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। बातचीत होती रहती है, एक दूसरे पे बयान भी होते रहते हैं, लेकिन उनका सदे बाप जो है ना करने के लिए ऊपर लोग बैठे हुए हैं जो कि टॉरेट भी करते हैं, और जो टॉरेट नहीं हो चीज होती उसको बकायदा फिर अपने जोर से जमाते हैं और जोर से ले आते हैं।
1: बेग साहब, आपका जो 14 अगस्त का प्रोग्राम हो रहा है तो क्या ये दावत आम है या सिर्फ अपने पार्टी के लोगों को या बुलाया आपने?
2: नहीं, ये कोई दावत आम नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून के जियालों के लिए है। जो मुस्लिम लीग नून कहते हैं कि हम मुस्लिम लीग ही हैं, वो वेलकम, और जो मुस्लिम लीग में इंतशार फैलाना चाहते हैं वो नहीं चाहिए।
1: चलें बेग साहब, आखिर में अपने सामान्य नाजरीन को अपने तजर्बे की बुनियाद पर, साहब का सोल्जर होने की बुनियाद पर आप क्या पैगाम देंगे?
2: हम ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी जो है ना उसको सपोर्ट करें, पाकिस्तान आर्मी ना हो तो हम एक रात भी सुकून की नींद नहीं सो सकते। लिहाजा पाकिस्तानी अवाम को चाहिए कि अवाम फौज की इज्जत करें, फौज से प्यार मोहब्बत करें, और फौज जो है वो हमारा सरमाया भी है और हमारा जो सरहदों की हिफाजत करने वाला अदारा भी है और हमारी रातों की नींद जो है वो भी देने अच्छी देने वाला अदारा भी है। लिहाजा सबको चाहिए कि सोच समझ के बात करें, लेकिन किसी वक्त में किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर से कोई बात हो जाती है तो उसको इग्नोर करें और देखें इसने किस बात पे ये बात की है और ये क्या चाहता है, और बातचीत के जरिए जी सियासी हल जो है वो निकलते हैं। इसके अलावा तो और कोई तरीका कार नहीं।
1: बेग साहब एक खबर है कि 9 तारीख को पाकिस्तान एम्बेसी के सामने पीटीआई वाले डेमोस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, आप क्या कहेंगे?
2: ये कोई पहली दफा नहीं हुआ ऐसे, ये पहली दफा नहीं हुआ ऐसे, ये आज से 30 साल पहले का जो सिलसिला चल रहा है कि एम्बेसी वालों को तंग करो, ये करो वो करो। अब एम्बेसडर साहब न्यूट्रल हुए हैं, उन्होंने कहा मेरे लिए सारे पाकिस्तानी एक जैसे हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम जो है स्पेशल है, तो इनको समझ नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए ने? अगर इन्हें कोई जलसा जुलूस करना है तो उसके लिए और बहुत सी जगह एम्बेसी जो है ना उसको बख्शे। आप पूरी जिंदगी एम्बेसी के साथ तो आप खड़े रहे हो और अब जो है एम्बेसी वाले ने ये कहा कि हम सबके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, तो आप चाहते हैं कि सारे दरवाजे बंद कर दें सिर्फ हमारा दरवाजा खुला रहने दें, तो ऐसे नहीं होता। इनको चाहिए को खुदा का खौफ करें और ये जो ऐसे नाम नहाद जलसे नाम नहा उसको बंद करें प्लीज।
1: बेग साहब आपका मैसेज आ गया, बहुत शुक्रिया आपने कीमती टाइम हमें दिए, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा
2: जी। राज साहब आपको बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे लिया और आंदा भी जब भी चाहे आप मुझे ले सकते हैं रेडियो, थैंक यू सो मच।
1: पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद,
2: पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद, मरियम नवाज जिंदाबाद।
1: समय नाजरीन ये थे मिर्जा रहमतुल्ला बेग जो कि चीफ पैटर्न हैं डेनमार्क के, उनका आपने पैगाम सुना। उन्होंने कहा कि जी हम 14 अगस्त को, पहले 16 को था लेकिन उन्होंने 14 अगस्त हमेशा मनाते हैं, उनकी टीम ने आपस में मीटिंग की और फैसला किया कि 14 अगस्त वाले ही दिन मनाएंगे।
0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामने नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का ये हमारा लाइव प्रोग्राम है और आप सबको पहले से मालूम है कि सफारत खाना ने पहले इतला कर दी थी कि 14 अगस्त को वो अपना प्रोग्राम कर रहे हैं हमेशा की तरह। इस दफ़ा भी वो 14 अगस्त को अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। तो सामने नाज़रीन, चूँकि हम पब्लिक के आदमी हैं, अवाम के आदमी हैं, तो हम चाहते हैं कि लाइव मालूमात आपको मिले, आपको दावतें, ये दावतें आम होती है। तो इस वक्त अवामी सफ़ीर पाकिस्तान जनाब मोहतरम शुएब सरवर साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। शुएब साहब, एक बार फिर खुश आमदीद।
2: जी अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, आपको और तमाम कम्युनिटी मेंबरान को जो इस वक्त रेडियो सुन रहे हैं।
1: शुएब साहब, आपने बड़ा बिजी ये साल गुजारा, ये जो साल नया 2026 का है, इसमें आप बहुत ज़्यादा बिजी रहे। पहले कुराने में तो आपको वो टाइम नहीं मिला था, आपने सारी मसरूफियात की जो है वो कसर निकाल दी। मैंगो फेस्टिवल्स हुए, इस दफ़ा पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा आम जो है वो बिका डेनमार्क की हिस्ट्री में, और भी बहुत सारे प्रोग्राम हुए इंफॉर्मेशन के हवाले से, आपकी मुलाकातें भी हुई। अब 14 अगस्त को प्रोग्राम हमेशा की तरह आ रहा है, तो 14 अगस्त के हवाले से अपनी कम्यूनिटी को क्या मैसेज देंगे?
2: जी, ये हर साल की तरह जी हम इंशाल्लाह इस दफा भी 14 अगस्त की जो फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी है और वो 10:30 बजे जी एम्बेसी में है, और तमाम पाकिस्तानियों को जी इनविटेशन है कि वो अपनी फैमिलीज के साथ, बच्चों के साथ आएं और इस प्रोग्राम में जी शिरकत करें। और इंशाल्लाह इस दफा पिछली दफा की तरह आप लोग, मुझे उम्मीद है कि लार्ज नंबर्स में पाकिस्तानी आएंगे। और ये साल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, एक उसमें खसूसियत है कि ये कायदे आजम के 150वीं सालगिरह है पाकिस्तान, उनकी पैदाइश की। तो ये हमारे लिए जो 2026 है का जो जश्न आज़ादी है वो एक डबल एक खुशी का एक मौका है। और ये इस वक्त हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं जब आपको पता है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की सफारतकारी की तारीफें हो रही हैं, और जो पाकिस्तान जो एक रोल अदा कर रहा है दुनिया में बैनुल अक़वामी अमन के लिए, जिसमें हमारे वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो ग्लोबल डिप्लोमेसी में एक अहम रोल अदा कर रहे हैं और उसकी अप्रिसिएशन भी हो रही है। तो इस वक्त पाकिस्तान का जो मुकाम है वो बहुत बुलंद है मुख्तलिफ अकवाम में, और दुनिया हमारे इस रोल को अप्रिशिएट भी कर रही है। तो मैं तमाम पाकिस्तानियों को इनवाइट करता हूँ आपके रेडियो के तवसत से, सोशल मीडिया पे भी हमने एडवर्टाइजमेंट दी है कि जी के तमाम लोग आएं फैमिलीज के साथ और ये हमारे साथ जो यौम आज़ादी को मनाएं जी।
1: सफीर पाकिस्तान, ये दावत आम है ना?
2: जी जी, तमाम पाकिस्तानियों के लिए है जी, बिल्कुल, जो डेनमार्क में रहते हैं।
1: सफीर पाकिस्तान, चूँकि आपको पता कि दुनिया में जो कानून कायदे सिक्योरिटी का इंतज़ाम, इसके हवाले से कोई मैसेज देना चाहें?
2: जी वो जो है जो सिक्योरिटी के मामला वो जी है वो डेनिश गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, और हमें इनके हमेशा से उनका मुकम्मल इस बारे में तावुन रहा है, और वो होस्ट गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी से इस बारे में आगाह है जी। तो आप हमेशा की तरह जी आप आए जरूर और इंशाल्लाह हमारे साथ ये खुशियों में शरीक हूँ।
1: बड़ी खुशी की बात है, आपका भी इसमें बड़ा हाथ है। इस दफा पाकिस्तान का आम डेनमार्क की हिस्ट्री में बहुत ज्यादा बिका।
2: जी जी, अल्लाह का शुक्र है जी, जो पाकिस्तान का जो मकाम इस वक्त दुनिया में है हमारी सफारतकारी की वजह से, उसकी हर जगह अप्रिसिएशन है। और ये यकीनन जो इस वक्त डेनमार्क के साथ हमारे ताल्लुकात हैं वो बहुत अच्छे हैं, और उस दिन आपके लिए आप शायद कोई खसूसी पार्टिसिपेंट भी उधर हो, तो इंशाल्लाह जो कि इस चीज की रिफ्लेक्शन है कि जी के हमारी इस वक्त ताल्लुकात किस लेवल पे हैं डेनमार्क, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये मजबूत फर्दर होंगे, और उसमें हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी का भी जी डेनमार्क में बड़ा रोल है, जो कि इस सोसाइटी का, इस मुल्क का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, और वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस मुल्क की तमाम फील्ड्स में।
1: सफीर पाकिस्तान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया।
2: शुक्रिया जी, और मैं इंशाल्लाह आपको भी उम्मीद है कि जी परसों हमारी मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।
1: थैंक यू जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।
2: पाकिस्तान जिंदाबाद।
1: سامعین ناظرین، یہ تھے سفیر پاکستان شعیب سرور صاحب، جن کا آپ اوپن میسیج سن رہے تھے۔ ہمیشہ کی طرح وہ دعوت عام دیتے ہیں، اوپن ان کا میسیج ہوتا ہے، ہر کوئی بندہ آ سکتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ۔ تو آپ کو پاس ٹائم ہے تو آپ کو ضرور جانا چاہیے۔ اپنے ملک کا جو پیار ہوتا ہے وہ سب کا پیار ہوتا ہے، کسی امبیسڈر صاحب کا نہیں، سب کا ہوتا ہے، پاکستان سب کا، کسی ایک کا پاکستان نہیں ہے۔ تو جب سفیر محترم آپ کو دعوت دے رہے ہیں تو آپ کو ضرور جانا چاہیے۔
0: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामने नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर अपनी टीम के साथ बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर है। सामने हमने इंट्रो में भी कहा था कि आज हमारे बहुत सारे मेहमान होंगे। आज हमारी मौजूद शख्सियत जिन्हें आप अक्सर सुनते रहते हैं, मुस्लिम लीग नवाज के चीफ पैटर्न हैं, चीफ आर्गेनाइजर हैं मुस्लिम लीग नवाज के डेनमार्क में, मिर्ज़ा रहमतुल्लाह बेग साहब इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। बेग साहब, एक बार फिर आपको अदारा आपकी आवाज़ पर खुश आमदीद कहते हैं।
2: जी राय साहब, बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत नवाजिश अनायत।
1: बेग साहब, मौसम तो अच्छा है और उसके अलावा धूप भी निकलती है, गर्मी भी है, तो इसका ख्याल रखिएगा। अब आम भी बहुत ज्यादा मार्केट में आ चुके हैं और 14 अगस्त के भी फंक्शन हो रहे हैं।
2: जी बिल्कुल, के बहुत सी जगह पे 14 अगस्त के फंक्शन हो रहे हैं और हमारा भी जो प्रोग्राम है वो शाम 6 बजे 14 तारीख को ही, क्योंकि जितने साथी सब ने मिलकर फैसला किया कि हम 14 अगस्त को ही प्रोग्राम करेंगे।
1: आपका 16 अगस्त को नहीं था?
2: नहीं सर, वो हमने चेंज करके 14 अगस्त पे आ गया। जी हमेशा हमारा प्रोग्राम 14 वाले दिन ही होता है, रिकॉर्ड मौजूद है आपके पास, तो इसलिए सब दोस्तों ने मिलकर फैसला किया कि हम 14 को ही करेंगे।
1: बेग साहब, चले इलेक्शन हो रहे हैं कश्मीर में, आपकी जमात जो है वो इलेक्शन जो है पहला मरहला वो जीत चुके हैं, तो दूसरा मरहला भी शुरू हो गया है, फिर अब तीसरा मरहला भी होगा। ये जो शोर पड़ा हुआ है कश्मीर में, आप क्या कहेंगे?
2: सर देखें, दुश्मन जो है ना, दुश्मन ही होता है, उससे आपको किसी किस्म की कोई तवक्को रखने की जर नहीं होती। इसलिए नहीं होती कि दुश्मन ने अपना कभी ना कभी किसी ना किसी जगह पंगा जो है वो लेने लेना। बॉर्डर पे इंडिया बैठा हुआ है, वो उसके इतने प्यादे हैं वहां पे कि आदमी जो है ना मजबूर हो जाता है उनको कुछ कहने के लिए। और जब पाकिस्तान और आजाद कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का एक वो हिस्सा है जिसके बगैर पाकिस्तान जो है ना वो मुकम्मल ही नहीं है, और हमने आजाद कश्मीर को इतनी सर्विस दी है पाकिस्तानी अवाम ने कि आप सोच भी नहीं सकते। लिहाजा ऐसे जो छोटे छोटे हादसे होते हैं वो तो हर जगह होते हैं, पाकिस्तान में भी हो जाते हैं कभी कभी।
1: लेकिन साहब, बड़ा ऐलान किया आपकी जमात ने कश्मीर में, हमारी हुकूमत बनेगी तो हम कश्मीर को ये चीजें देंगे, तो बेग साहब आप क्या कहेंगे?
2: 100% अगर नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहब ने ये ऐलान किया तो वो देंगी। देखे उन्होंने कहा कि हम आपको बसें देंगे, उन्होंने 10 बसें उसी वक्त ही भेज दी। जो चीज भी उनका वो ऐलान करेंगे तो वो इंशाल्लाह ताला प्रोवाइड करेंगे, डेफिनेट।
1: बेग साहब, मोहसिन नकवी साहब ने बयान दिया, हालांकि मोहसिन नकवी साहब आपकी हुकूमत का, मुस्लिम लीग की हुकूमत का हिस्सा है, वजीर दाखिला है, तो बड़ा मुतनाजा सा बयान है। राणा सनावला साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दूसरे लोग भी इस पर बात कर रहे हैं, आप खुद सोल्जर हैं, तो आप क्या कहेंगे?
2: देखे बात सुने, नकवी साहब जो है ना उसको 4-5 पोस्टें दी हुई है, और किसने दी हुई है, कैसे दी हुई है, क्यों दी हुई है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आपको हर चीज की खबर होती है और आप खबर रखते हैं, और आप इसलिए ये कुछ भी कहना कबल वक्त है, सारे इकट्ठे बैठ जाएंगे, जो मुश्किल हालात में जा रहे हैं काम उसको ठीक हो जाएंगे। जो दुश्मन तो ये चाहते हैं कि नवाज की जो हमारी हुकूमत है पाकिस्तान में वो भी खत्म हो जाए, तो ऐसे नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। बातचीत होती रहती है, एक दूसरे पे बयान भी होते रहते हैं, लेकिन उनका सद्देबाप जो है ना करने के लिए ऊपर लोग बैठे हुए हैं जो कि टॉर एड भी करते हैं, और जो टॉर एड नहीं हो चीज होती उसको बकायदा फिर अपने जोर से जमाते हैं और जोर से ले आते हैं।
1: बेग साहब, आपका जो 14 अगस्त का प्रोग्राम हो रहा है, तो क्या ये दावत आम है या सिर्फ अपने पार्टी के लोगों को या बुलाया आपने?
2: नहीं, ये कोई दावत आम नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून के जियालों के लिए है। जो मुस्लिम लीग नून कहते हैं कि हम मुस्लिम लीग ही हैं, वो वेलकम, और जो मुस्लिम लीग में इंतशार फैलाना चाहते हैं वो नहीं चाहिए।
1: चलें बेग साहब, आखिर में अपने सामान्य नाजरीन को अपने तजर्बे की बुनियाद पर, साहब का सोल्जर होने की बुनियाद पर आप क्या पैगाम देंगे?
2: हम ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी जो है ना उसको सपोर्ट करें, पाकिस्तान आर्मी ना हो तो हम एक रात भी सुकून की नींद नहीं सो सकते। लिहाजा पाकिस्तानी अवाम को चाहिए कि अवाम फौज की इज्जत करें, फौज से प्यार मोहब्बत करें, और फौज जो है वो हमारा सरमाया भी है और हमारा जो सरहदों की हिफाजत करने वाला अदारा भी है और हमारी रातों की नींद जो है वो भी देने अच्छी देने वाला अदारा भी है। लिहाजा सबको चाहिए कि सोच समझ के बात करें, लेकिन किसी वक्त में किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर से कोई बात हो जाती है तो उसको इग्नोर करें और देखें इसने किस बात पे ये बात की है और ये क्या चाहता है, और बातचीत के जरिए जी सियासी हल जो है वो निकलते हैं। इसके अलावा तो और कोई तरीका कार नहीं।
1: बेग साहब, एक खबर है कि 9 तारीख को पाकिस्तान एम्बेसी के सामने पीटीआई वाले डेमोस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, आप क्या कहेंगे?
2: ये कोई पहली दफा नहीं हुआ है ऐसे, ये पहली दफा नहीं हुआ ऐसे, ये आज से 30 साल पहले का जो है सिलसिला चल रहा है कि एम्बेसी वालों को तंग करो, ये करो वो करो। अब एम्बेसडर साहब न्यूट्रल हुए हैं, उन्होंने कहा मेरे लिए सारे पाकिस्तानी एक जैसे हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम जो है स्पेशल है, तो इनको समझ नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए इन्हें। अगर इन्हें कोई जलसा जुलूस करना है तो उसके लिए और बहुत सी जगह है, एम्बेसी जो है ना उसको बख्शे। आप पूरी जिंदगी एम्बेसी के साथ तो आप खड़े रहे हो और अब जो है एम्बेसी वाले ने ये कहा कि हम सबके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, तो आप चाहते हैं कि सारे दरवाजे बंद कर दें सिर्फ हमारा दरवाजा खुला रहने दें, तो ऐसे नहीं होता। इनको चाहिए को खुदा का खौफ करें और ये जो ऐसे नाम नहाद जलसे नाम नहादे उसको बंद करें प्लीज।
1: बेग साहब, आपका मैसेज आ गया, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमें दिए, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा
2: जी। राज साहब आपको बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे लिया और आंदा भी जब भी चाहे आप मुझे ले सकते हैं रेडियो, थैंक यू सो मच।
1: पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद,
2: पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद, मरियम नवाज जिंदाबाद।
1: समय नाजरीन, ये थे मिर्जा रहमतुल्ला बेग जो कि चीफ पैटर हैं डेनमार्क के, उनका आपने पैगाम सुना। उन्होंने कहा कि जी हम 14 अगस्त को, पहले 16 को था लेकिन उन्होंने 14 अगस्त हमेशा मनाते हैं, उनकी टीम ने आपस में मीटिंग की और फैसला किया कि 14 अगस्त वाले ही दिन मनाएंगे।
3: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें। ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।